0: लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk
0: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए, लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मन कोय मन्ने सुध होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए।

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Be part of a historic grand opening.
4: Experience the newly inaugurated BAP. P.S. Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
3: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
4: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
3: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
9: Breakfast with Deep Raja. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में आप सभी का फेवरेट गाना फिल्म बाजार से लिया था, जिसमें खयाम साहब का म्यूजिक था। और उससे पहले सभी का फेवरेट गाना, सभी की फेवरेट आवाज जो है मोहम्मद रफी साहब की आवाज, और फिल्म का नाम लोफर जो 1973 में आई थी। और लीजिए, दो आपके फेवरेट गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। ये है आप सभी का मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं ग्रेटर लंदन में, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा। अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में होंगे और पूरा हफ्ता खूब मजे के साथ बिताया होगा, और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज भी प्रोग्राम में वो सब कुछ होगा जो हमेशा होता है, और क्या होगा वो मैं बताती रहूंगी, लेकिन आज एक कंपटीशन भी होगा। जी हाँ, एक कंपटीशन भी होगा और आपको कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा, और वो क्या है वो भी बताऊंगी, थोड़ा सब्र करो। लेकिन पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि जून के पहले पहले अगर आप कुछ जीतना चाहते हैं तो आप जीत सकते हैं £75 का वाउचर, जब आप एवरीडे जीत सकते हैं, जब आप ट्रांसफर करते हैं £1,000 से ज्यादा, या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें मैच होने जा रहा है, पहले तो नेदरलैंड्स और स्वीडन का जो ग्रुप एफ में आते हैं, और उसके बाद ग्रुप ई का मैच होगा जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच में। और आपको बता दें कि ये स्पॉन्सर किए हैं रैकलो ने, और अगर आप रैकलो से कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है जब आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Laika Gold.
4: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over. Sadco.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: सेलिब्रेट फादर्स डे ऑन संडे 21st ऑफ जून इन अम्बाला स्टाइल। अम्बाला स्वीट्स हैज बीन ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर थ्रू टेस्ट एंड ट्रेडिशन सिंस 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम।
6: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
9: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
11: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
12: वेलकम टू द जंगल।
13: फिल्म बिल्कुल फेक,
12: हमारे फिल्म आर्मी वाली
14: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
13: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
12: और स्टार कास्ट है
13: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
15: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
13: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
16: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
17: मैं किस लिए फिल्म में?
18: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड। Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
5: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाजों में था ये गाना फिल्म सोल्जर से, जिसने बॉबी देओल की जो लव बॉय वाली इमेज थी उसको खत्म करके एक एक्शन स्टार की इमेज बना दी थी इस फिल्म सोल्जर में। और उनके साथ थी प्रीटी जिंटा। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसके गाने काफी पसंद किए गए थे, जिसमें म्यूजिक था अनु मलिक का और साथ में थे सुरेंद्र सोढ़ी। और सुरेंद्र सोढ़ी जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं कि ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक, और आपके ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। तो चलिए क्या करें, डाल ली जाए एक नजर उन पर।
1: ये है Like a gold.
0: जी हाँ, बिल्कुल, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आपको बताते चलें कि आज जो मैसेज हमें सबसे पहले भिजवाया है हमारे रेगुलर लिसनर विजय गुडूरी जी ने, और आज भी आपने बड़ी ही अच्छी सी आज का विचार हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं, भरोसा उन पर करो जो तुम्हारी तीन बातें जान सकें, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। बहुत सुंदर थॉट, थैंक यू। और चलिए इसी खूबसूरत थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। मनीषा शाह आप हमारे साथ हैं, शेखर जी कहते हैं, मुझे शेखर आनंद कहते हैं और मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू मिस्टर शेख। नरेंद्र भागिया जी आपने भी कुछ कहा है, और आपने कहा है कि कहते हैं, क्या कहते हैं कि यादों का शहर ना, यादों के शहर यादों के सहारे, ऋतु यादों के सहारे दुनिया नहीं चलती, बिना किसी शायर के महफिल नहीं बनती। एक बार पुकारो तो सही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों के बिना ये धड़कन नहीं चलती। क्या बात है नरेंद्र जी, स्वागत है आपका भी इस शो में। रिक स्टार रिकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं। रिकिन जी कहाँ थे, इतने दिनों बाद आपका मैसेज आया है, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू भारत गंगाराम जी, थैंक यू मालती जी कहती है, मुझे हमेशा ही आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप ये कहती हैं, स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी, प्रीति बेल्जियम से हमारे साथ हैं। पुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुरू के दो गाने सुनकर आपको आपकी मम की याद आ गई। तो होता है कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी रहती हैं। आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू भाइयों। मोहम्मद अयूब चौहान जी, थैंक यू फारूक मोहम्मद जी, कैंट से सलमा जी, मुकेश पटेल जी कहते हैं, मौसम आज बहुत शानदार है, बेईमान तो नहीं है। अब देखिए, कुछ लोगों को ये शानदार मौसम ही थोड़ा बेईमान लगता है। लेकिन गाना बहुत सुंदर था, आपने एंजॉय किया, सो थैंक यू। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, प्रज्ञा जी कहती हैं, आपका इंतजार है, थैंक यू। वियाना सुन से अनिल सोनी जी सुन रहे हैं, निर्मला हमारे साथ हैं, हंसा वोरा, जासू जी, संध्या वासर, तोची जी, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपने भी लिखा है कि वर्ल्ड कप के जुनून में एक छोटा सा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है, और इसे लिखा है कि मेहनत करो और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। बिल्कुल सही कहा है। वैसे ये फुटबॉल के खिलाड़ी डेढ़ घंटे तक ही ना, हाँ, कितना दौड़ते रहते हैं, और एक गोल मिलता है तो वाकई में खुशी होती है। और आजकल मैचेस चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। महेंद्र पटेल जी थैंक यू, योगेंद्र जैन जी, सुमन बद्रेसा, ज्योति जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपने इतनी मेहनत करके मुझे इतने प्यारे मैसेजेस भिजवाए, तो ये अगला गीत बिल्कुल आपके लिए बनता है, मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए मुकेशी की आवाज में ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है और जिन सभी का भी ये फेवरेट गाना है। सहर जी हमारे विजय गुनोवा जी बैटरसी में सुन रहे हैं, हमारे गिरीश जी भारत में सुन रहे हैं, कहते हैं सैटरडे का तो बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, फरीदा गुलाम अली जी थैंक यू, दिनेश पोपट जी बहुत धन्यवाद। और आपको याद दिला दें कि ऐसे ही बहुत सारे गाने आज आपको सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसे हम कहते हैं यादें। और उसका कारण ये है कि आज की यादें में हम शम्मी कपूर को याद करने वाले हैं। शम्मी कपूर के बहुत सारे फैंस हैं हमारे यहाँ, तो आप सब तैयार रहिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में उनके बारे में उनसे जुड़ी कुछ कहानी किससे सुनाऊंगी और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनाऊंगी।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: लेकिन ये भी याद दिला दे कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में कंपटीशन भी होने जा रहा है और ये कंपटीशन क्या है ध्यान से सुनिए। लाइका रेडियो नेटवर्क जेज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देने जा रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी शो के, जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी। ये है नाटक का स्टेज का जो कॉमेडी स्टेज शो का नाम, और इसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये फ्राइडे 26 जून को होगा 27 पाटीदार समाज वेम्बली लंदन में, और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये टिकट सिर्फ लंदन शो के लिए है, क्योंकि ये शो और भी कहीं हो रहे हैं लेकिन आपको हम सिर्फ लंदन शो वाले टिकट्स देंगे। इसलिए प्रोग्राम का अगला हिस्सा ध्यान से सुनते रहिए।
1: Laika Gold. Laika Gold. Ritu Sharma live on Laika Gold, Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल से बेटर और क्या, विजिट कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल और उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और उनके साथ न सिर्फ टिकट्स बल्कि पूरी डील इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल सब कुछ बुक करा सकते हैं। एट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 साल से आपका साथ दे रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं, तो याद रखिए साउथ हॉल ट्रैवल।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. Even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: Ritu Sharma on Laika Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
9: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented, and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
12: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
12: I switched to Simzy before we left London.
11: Simzy? Since when are you the tech expert?
12: Since I decided I want a stress-free holiday.
13: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
14: T's and C's apply.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
15: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
16: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
18: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escort and tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
19: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
20: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeah Yavo. Only on Like a Gold.

0: शम्मी कपूर के गाने एक से बढ़कर एक हैं जिन्हें आज आप इस प्रोग्राम में सुनेंगे। कुछ गाने मैंने चूज किए हैं और बड़ा डिफिकल्ट था कि कौन से गाने छोड़ दूं और कौन से गाने बजा दूं, लेकिन देखते हैं आज कौन से गीत आप की पसंद के इस प्रोग्राम में बज पाते हैं। लेकिन आज हम शम्मी कपूर साहब को याद कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि कभी उन्हें जानवर कहा गया, कभी उन्हें जंगली कहा गया, लेकिन जब लोगों ने उनका काम देखा तो उनके दिल से एक ही आवाज़ निकली, शम्मी तुम सा नहीं देखा। और देखिए इसीलिए तो आज के ज़माने में भी शम्मी कपूर साहब के इतने सारे फैंस हैं, ये मुझे आपके मैसेजेस बता रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आज की यादें इस सैटरडे की बेस्ट यादें होंगी, हमारे विजय जी का कहना है। तो चलिए उनसे जुड़े किस्सों की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हिंदी सिनेमा के एल्विस प्रेस्ली कहे जाते हैं शम्मी कपूर साहब, और उस जमाने के बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एक अलग ही डांसिंग स्टार थे, और ये अंदाज लोगों को उनका तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। वैसे तो उनका जन्मदिन अक्टूबर में आता है और हम सब जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे हैं, राज कपूर के छोटे भाई हैं, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1953 में की थी जो इनकी फिल्म थी जीवन ज्योति। लेकिन शुरुआत की 15 फिल्में जिस लगभग 15-16 फिल्में थी या 10-12 फिल्में थी, जिस जितनी भी फिल्मों में इन्होंने काम किया, फिल्में चली नहीं, सफल नहीं रहीं। और फिर इनकी फिल्म आई 1957 में तुम सा नहीं देखा, 2 साल बाद दिल दे के देखो। और इन दोनों फिल्मों में शम्मी कपूर का अंदाज अपनी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग था, और इन फिल्मों में एक चुलबुले रोमांटिक हीरो की तरह नजर आए थे शम्मी कपूर। और उनके स्टाइल को लोगों ने इतना पसंद किया कि उसके बाद ये स्टाइल तो उनका स्टाइल ही बन गया। और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया जिसके एक से बढ़कर एक गाने हैं। एक उनकी फिल्म आई थी जंगली, जिसने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। और इस जंगली फिल्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है जिसे मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी अब से बस थोड़ी देर में। लेकिन पहले जंगली का गीत सुनाती हूँ, वो भी बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app। और आपको बताते चलें कि 75 pounds का वाउचर एवरीडे आप जीत सकते हैं जब आप 1000 pounds से ज्यादा मनी ट्रांसफर करवाते हैं, या फिर गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि आज नेदरलैंड्स और स्वीडन की टीम्स के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का मैच होगा, और ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट की टीम्स खेलेंगी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि आप रैकलो सॉलिसिटर से 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, फ्री एडवाइस ले सकते हैं जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: होगा मुझ पर।
1: यस, जंगली फिल्म से था ये गाना, जिसे आप में से बहुत सारे साथी सुनना चाहते थे। तो चलिए, ये गाना जिन्हें पसंद है, मैंने ये उन सभी के नाम पर किया। लेकिन इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा ज़रूर सुनवाऊंगी कि जब इस फिल्म के सबसे एनर्जेटिक, सबसे पॉपुलर गाने की शूटिंग हो रही थी, आपको याद ही होगा गाना याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। यस, ये गाना कितना एनर्जेटिक है और इस गाने में जो गजब का डांस है, जो एनर्जी दिखती है, उसके पीछे कोई कोरियोग्राफर नहीं था। अक्सर ही शम्मी कपूर के जो गाने थे उनके लिए कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं होता था, वो अपने गानों के स्टेप्स खुद ही डिजाइन करते थे। और ये गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इस गाने की शूटिंग श्रीनगर की बर्फीली वादियों में हो रही थी, तो इस गाने को सुनकर और उन वादियों को देखकर शम्मी कपूर इतने जोश में आ गए कि उन्होंने बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे की तरफ बार बार फिसलना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह से जंगली हो गए थे, या कहूँ इस गाने के मूड में डूब चुके थे। और बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे आते, बार बार ऊपर जाते फिर फिसल कर नीचे जाते, और वो इतनी ज़ोर से बार बार ये काम कर रहे थे कि ऐसा करने से जब वो रीढ़ के बल फिसल रहे थे शूटिंग के दौरान, उन्हें मालूम पड़ा कि उनके घुटने की हड्डी खिसक गई है और पीठ में गंभीर चोट आई है। कमाल की बात यह है कि दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट पूरा किया। और देखिए, गाना आज भी बॉलीवुड के इतिहास का सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, कहूँ या कहूँ यादगार गाना तो गलत नहीं होगा, माना जाता है। और ये भी हम सब जानते हैं कि इस गाने में प्रयागराज ने पीछे से आवाज़ में गाया था याहू। लेकिन अब ये गाना तो मैं नहीं सुनवाने वाली हूँ क्योंकि इस फिल्म का एक गीत सुनवा चुकी हूँ। लेकिन एक और बहुत ही मज़ेदार सा गीत आने वाला है आप सबके लिए, और उस गीत को बजाने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँ, कॉम्पिटिशन भी तो है। तैयार हैं? चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के कंपटीशन की।
2: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
1: तो शम्मी कपूर के गीतों को एंजॉय करते करते चलिए कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लीजिए। लाइक अ रेडियो नेटवर्क आपके जेएस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका देना जा रहे हैं दो टिकट्स जीतने का, एक गुजराती कॉमेडी शो का जिसका नाम है सखना रेजो हस्बैंड जी, जिसमें लीना शाह और समीर शाह ने काम किया है। ये 26 जून फ्राइडे को होगा एट 27 पाटीदार समाज वैमली लंदन में। और आपको बता दें कि ये जो टिकट्स हैं ये लंदन शो के लिए ही हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हस्बैंड लिखना होगा और हस्बैंड के साथ साथ क्या लिखना होगा, अपना नाम लिख दीजिए, अपना टेलीफोन नंबर और अपना ईमेल आईडी भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में बैक टू बैक गानों के बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूंगी और जो भी विनर होंगे वो इस शो को देखने के लिए जाएंगे। और टिकट्स आपको कलेक्ट करने होंगे वेन्यू रिसेप्शन से जिस दिन शो है उसी दिन शाम को जाकर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो फटाफट हस्बैंड लिख लिए, अपना नाम लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर हमें भेज दीजिए फटाफट।
3: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और आपको याद दिला दूं कि ये गुजराती प्ले है, तो अगर आप गुजराती बोलते हैं या समझते हैं तभी जाइए, तो फायदा है, नहीं तो मेरे जैसा कोई इंसान पहुंच गया तो फिर जोक समझ में नहीं आएंगे तो मजा नहीं है। इसलिए अगर आप गुजराती बोलते समझते हैं तभी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए।
3: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा जी और रफी साहब की आवाज में शम्मी कपूर की सुपरहिट फिल्म तुम सा नहीं देखा से था ये गाना। और तुम सा नहीं देखा शायद शम्मी कपूर साहब ने कहा होगा जब उन्होंने गीता बाली को देखा होगा। आप जानते ही हैं कि गीता बाली उनकी पत्नी थी और गीता बाली से बहुत प्यार कर बैठे थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर जब फिल्मों में आए थे तो उनकी शुरुआत की कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप रही थीं, लेकिन गीता बाली की फिल्में सुपरहिट थीं और गीता बाली उस समय एक बड़ी स्टार भी बन चुकी थी। लेकिन शम्मी कपूर तो उन्हें दिल दे बैठे थे और उनके पीछे ही पड़ गए थे। और देखिए, इतनी बड़ी हीरोइन उस जमाने की टॉप स्टार थी गीता बाली, लेकिन शम्मी कपूर एक फ्लॉप एक्टर थे। फिर भी जब शम्मी कपूर ने उनसे शादी के लिए बात की तो गीता बाली ने उनसे हाँ कह दिया। बड़े ही गुपचुप तरीके से शादी हुई, शम्मी कपूर कितने खुश होंगे। लेकिन आप जानते हैं ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। बहुत ही छोटी सी उम्र में गीता बाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 35 साल की थी 35 ईयर्स की एज में जब उन्हें चिकन पॉक्स हुआ, और उस चिकन पॉक्स ने ही उनकी जान ले ली सिर्फ 35 ईयर्स की एज में। शम्मी कपूर साहब के दिल पर क्या बीती होगी कि जिसे उन्होंने इतना चाहा, लड़ झगड़ कर गुपचुप कर शादी रचाई उनका साथ बस इतने ही कम समय के लिए। लेकिन ऐसा हुआ और फिर शम्मी कपूर गीता बाली के गम में डूब गए। आज हम शम्मी कपूर साहब के ही जीवन से जुड़ी कुछ बातें, कुछ किस्से सुनवा रहे हैं। गीता बाली से उन्होंने बहुत प्रेम किया लेकिन ये साथ ज़्यादा नहीं चला। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत शम्मी कपूर की फिल्म से सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में। Like a Extra Podcast Update। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इसे होस्ट किया है दीप राजा ने, और इस बार का टॉपिक है साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन पर जाकर सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
3: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
4: Hi, hello, Kecho, Hucho, Kechi, Daviana, Ashu, Tego, Arara, Public Demand, Hariti, Avirichu, London, Marana, Nataklaine, Patni Premier League, like a PPL, yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad Rajo.
5: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
11: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
10: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
13: Welcome to the jungle.
14: Film? Bilkul fake.
13: Hamari film army wali.
15: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
14: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
13: और स्टार कास्ट है
14: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
16: अन्ना, कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
14: वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास 26 जून।
17: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
18: मैं किस लिए फिल्म में?
19: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja champions South Asian females in sport.
20: I didn't have any female role models. I'm a Liverpool fan, so Stephen Gerrard was my role model. So now being 26 and doing what I'm doing, I want to be that person that younger boys and girls look up to and think, if Simran can do it, I can do it.
19: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
0: और जब गीता बाली शम्मी कपूर की दुनिया को छोड़कर गई होंगी, तो जरूर उनके दिल से यही आवाज निकली होगी।

0: शम्मी कपूर के गीतों की कामयाबी में मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और मज़ेदार बात थी कि शम्मी कपूर अक्सर रफ़ी साहब के रिकॉर्डिंग्स में मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन जब भी रफ़ी साहब गाना गाते थे तो उन्हें ठीक ठाक पता होता था कि शम्मी कपूर इस गाने में पर्दे पर किस तरह से उछल कूद करेंगे या फिर किस तरह से हाथ पैर हिलाएंगे। और इसीलिए तो ऐसा लगता है जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ शम्मी कपूर की ही आवाज़ है, क्योंकि ज़्यादातर गाने जो सुपरहिट हैं जो सुपरहिट नहीं भी हैं उनमें आवाज़ रफ़ी साहब की ही है। आज कुछ ऐसे ही गाने मैंने आपको सुनवाए। आज हमने यादें में याद किया शम्मी कपूर को। एक और गाना सुनवाऊंगी आज की यादें का, वो होगा आखिरी गाना, बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.05 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a Gold.
1: This is Like a Gold.
3: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARIRAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
12: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
11: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
12: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
13: साफो ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
14: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग बैक? व्हाट इफ योर रीमॉर्गेज पेड यू?
15: एट कैशबैक रीमॉर्गेजेस वी फाइंड यू डील्स दैट पुट रियल मनी बैक इन योर पॉकेट, नॉट जस्ट अ लोअर रेट बट एक्चुअल कैश, हंड्रेड्स समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स जस्ट फॉर स्विचिंग।
16: आवर एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ होमओनर्स अक्रॉस द यूके रीमॉर्गेज स्मार्टर एंड वॉक अवे रिचर।
15: कॉल अस टुडे ऑन 0208-706-0915, दैट्स 0208-706-0915, और विजिट cashbackremortgage.co.uk.
16: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
17: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
18: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
17: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
18: And you didn't pay those massive roaming charges?
17: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
19: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.

0: Pulitzer Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sierra South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.

0: लीजिए आशा जी की आवाज में था ये गाना प्यार में दिल पे मार दे गोली और संध्या भावसर के दिल पे सीधे गोली लग भी चुकी है, क्या बात है, ठिशकियाओ। महान फिल्म से था ये गाना जिसमें किशोर दा और आशा जी की आवाज़ है, और उससे पहले आपने राजपूत फिल्म का गीत सुना जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ थी। और लीजिए दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है, और ये है लाइका रेडियो नेटवर्क जहाँ पर ऋतु शर्मा है आपके साथ और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। स्वागत है लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका। पिछले आवर में यादें सुनी आपने शमी कपूर की और उन्हें बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और अब बारी है थ्री वर्ड्स गेम खेलने की और कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स सुनने की। लेकिन उससे पहले बताते चलूं कि प्रोग्राम के लास्ट आवर में एक कंपटीशन था जिसमें लाइका रेडियो नेटवर्क जैज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर आपको मौका दे रहे हैं जीतने का दो टिकट्स गुजराती स्टेज कॉमेडी जिसका नाम है सखना एजो हस्बैंड जी। और जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है उनका नाम है हरिवदन। हरिवदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलते हैं इस कंपटीशन के दो टिकट। किसी खास के साथ देख कर आइए इस स्टेज शो को और मज़े के साथ इंजॉय कीजिए, फिर हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और कल भी एक कंपटीशन है, तो जिन्हें आज मौका नहीं मिला जीतने का वो निराश परेशान ना होइए, कल कोशिश कीजिए, हो सकता है कल आप बन जाए इस कंपटीशन के विनर, यू नेवर नो, ठीक है ना। चलिए फिर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्री वर्ड्स गेम वाले कंपटीशन की। कंपटीशन नहीं ऋतु, ये तो गेम है जिसे हम हर बार खेलते हैं। जी हाँ, तो चलिए बताती हूँ आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम के थ्री वर्ड्स कौन से हैं। और ये थ्री वर्ड्स हमेशा है मैं किसी बॉलीवुड के किसी गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है उसका नाम उसका वो है प्यारे, दूसरा है दुनिया, तीसरा है दिल। 1971 में आई थी ये फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक है और लता जी की आवाज है। कौन सा है ये गाना? पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया और तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक, लता जी की आवाज। जरा बताइए तो सही कौन सा है ये गाना, अपने इस हमारे इस नंबर पर अपना मैसेज भिजवाकर।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323.
0: एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहला वर्ड है प्यारे, दूसरा वर्ड है दुनिया, तीसरा वर्ड है दिल। 1971 की फिल्म, आर डी बर्मन का म्यूजिक और लता जी की आवाज। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.05 भारतीय रुपए। ये ट्रांसफ़र आपको करवाना होगा SBI ब्रांच ऑनलाइन या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू, और एंड ऑफ जून के बीच में आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं हर रोज़ जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ओवर 1000 पाउंड्स एवरी डे, और या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Save up to 50% in the Dunelm sale.
3: There's still time to squeeze in some savings, but the Dunelm sale ends this Sunday. Don't miss up to 50% off thousands of products, from bedding to furniture and so much more. And breathe. Shop now, in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
4: Yeah, like a gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
3: dunelm.com. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Celebrate Father's Day on Sunday 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything and this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
12: Southall Travel, at all protected. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
13: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: Packed for the trip? Gifts? Passport?
15: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
14: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
15: Simzy?
14: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
16: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
17: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
18: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
17: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
18: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
17: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
18: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
17: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
18: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
19: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, પિકલ્સ હીટ. યે હે જયમિન ફૂડ્સ કા વાઇબ ચેક.
20: એડ દેસી તડકા ટુ યોર રૂટીન વિથ જયમિન ફૂડ કે વેરાયટી ઓફ સ્નેક્સ. ખાખરા, નમકીન, પાપડ, પિકલ્સ, ચિક્કી, પોટ મીલ્સ એન્ડ મચ મોર.
19: જયમિન ફૂડ્સ દેસી ક્રેવિંગ્સ અવેલેબલ એટ નિયરેસ્ટ એથનિક ગ્રોસરી સ્ટોર્સ.
21: થિંક યુ માઇટ બી ઓવરપેઇંગ ફોર કાર્ડ પેમેન્ટ્સ? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
22: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जी हाँ बिल्कुल, लिखा है इन हवाओं पे, लिखा है इन घटाओं पे कि मैं हूँ तेरे लिए और तू है मेरे लिए। और ये कह रहे हैं शरफून और बलराज एक दूसरे से। शरफून जी, आपका मैसेज आया है और आपने बताया है कि आपके बिलव्ड हस्बैंड जी आज अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं, तो चलिए ये गाना आपकी ओर से बलराज जी को ही डेडिकेट करते हैं और पूरी फैमिली उन्हें बड़े ही प्यार से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दे रही हैं। तो बलराज जी, हमारी ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे, और आज सैटरडे का दिन है, परिवार के साथ धूमधाम से बर्थडे मनाइए। और डर का गीत जिसे लता जी और हरिहरन ने गाया था, आपको डेडिकेट करते हैं। और आपको बता दें कि हरिहरन ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक और उनका शो भी होने जा रहा है। अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं बुक कराई हैं तो जल्दी कीजिए। और आप शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना जिसमें आवाज है मुकेश जी और साथ में है लता मंगेशकर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कैसे हो।
1: प्रदीप कुमार और अनीता गुहा पर यह गीत पिक्चराइज किया गया था, जो हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना था। और आपको बता दें कि अनीता गुहा जो अपने ज़माने की एक जानी मानी एक्टर रही हैं, जिन्होंने कई माइथोलॉजिकल फिल्मों में भी काम किया है, आज उनकी पुण्यतिथि है। 20 जून 2007 में जब उनकी 875 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर गईं। और इस फिल्म की हीरोइन जिसका नाम था संजोग, अनीता गुहा ही थी। और इस गीत को चलाकर हमने उन्हें आज याद किया।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: तो चलिए, अब समय आ गया है आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले गीत को किन किन साथियों ने पहचाना है उनके नाम बताने का। थैंक यू विजय गुडूरी जी, शो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके अलावा उल्लास जी, शरफून, प्रीति बेल्जियम से, मनीषा शाह, नरेन पटेल, हाजरा जी, दिव्या जी हैरो से, रोशनी, करसन पिंडोरिया, तोची जी, किरण जी हैरो से, नीलेश तन्ना, आशुतोष चौबे, अर्जुन जी, रानी सोहानी, मोहम्मद अयूब चौहान, अर्जुन जी, कुकी, संध्या भावसर, गुरशरणजीत, निर्मला जी, अनुषा खोड़ा, आप सभी ने गीत को बिल्कुल सही पहचाना है। और उस गाने को मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनवा दूं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
2: रिचि शर्मा ऑन लाइक अ गर्ल।
4: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: पानू।
1: मुकेश जी की आवाज में ये गाना उस जमाने में भी सुपर हिट था और आज भी सुपर हिट है। जब भी ये गाना बजता है आपके ढेरों मैसेजेस आते हैं और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना जिसे आप सबने पसंद किया है। और चलिए T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है और हमारे साथ
2: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: तो चलिए T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे साथ कमल जी हैं, आइए जानते हैं उनसे। हाँ जी कमल जी बताइए।
4: हाँ जी गुड आफ्टरनून नीतू, कैसे हो? ठीक ठाक।
1: बढ़िया बढ़िया, बताइए आज क्या हो रहा है मैच?
4: बस आज तो बहुत बड़े मैचेस हो रहे हैं। आज तो इट्स अ वेरी ग्लोरियस डे, अच्छा है, वेरी सनी एंड पीपल ए गुड क्राउड एज वेल। सो ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग ऑन नेदरलैंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर कर दिया, 219 for 6 इन 20 ओवर्स। और नेदरलैंड्स अभी चेस कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ये नहीं पहुंच पड़ेंगे। एट द मोमेंट दे आर 18 for 2 4.2 ओवर्स में। तो इट लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क एंड ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग वेरी वेल एंड फील्डिंग वेरी वेल। तो उसके बाद फिर मैच है, दूसरा मैच है पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश 14:30 को। दैट शुड बी अ वेरी गुड गेम। बोथ पीपल दे बोथ नीड अ विन। एंड देन वी गॉट द बिग वन Which is at 18:30, England taking Scotland. Sound to karta hai ke football ka match, but nahi, it's definitely T20 women ka England versus Scotland. So we will give you all the updates later on.
1: Thank you. Bye bye.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
2: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
1: तो चलिए हॉलिडे के लिए सोच रहे हैं तो एक ही नाम याद रखिए, साउथ ओल्ड ट्रैवल। उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और हॉलिडे अपनी बुक कराइए। फ्लाइट्स होटल्स इंक्लूडेड, इट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल, लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस, विजिट southoldtravel.co.uk।
1: और अब सुनवाते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: Save up to 50% in the Dunelm sale.
6: There's still time to squeeze in some savings, but the Dunelm sale ends this Sunday. Don't miss up to 50% off thousands of products, from bedding to furniture and so much more. Yay. And breathe. Shop now, in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
7: Leica Gold
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
11: Visit TravelHubWorld.com.
12: London, you asked and it's happening. Aditya Gadvi Garba Tour UK 2026.
13: Lattuke halo ne nandala.
12: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
14: Celebrate Father's Day on Sunday 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for the dad who deserves the very best. classic laddus, habsi halwa, or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
0: Aji aisa mauka phir kahan milega.
10: Maharaja Tours la rahe hain Captivating China 2026. Shanghai, Beijing, Xi'an or Chengdu ka unforgettable safar. Great Wall, Terracotta Warriors, high-speed trains or adorable pandas. Flights, hotels, Indian khana or guided tours, sab included. From £3,299 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
15: Location, location, location.
16: In real estate, location is everything and this one is a winner.
15: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
15: high appreciation
16: in Dubai.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
18: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
19: 4 beers, please, garçon!
18: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
20: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
21: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations. 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
22: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: करवा फिल्म से लिया था, जो है हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 368 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £101.05 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और लीजिए बस आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज़ तक, और न्यूज़ के उस पार अनुराग होंगे लाइका गोल पर आपके साथ, फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ, एंड नीरज होंगे लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी, और अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।
4: ये है लाइका गोल्ड,
5: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव, एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: Be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: Every parent wants their child to grow up healthy. HPV, the human papillomavirus, is a common infection that most people don't even know they have. However, it can lead to cancer in men and women. The HPV vaccine can stop this and is available for every child from age 12 and offers long-term protection with just one jab. Say yes to cancer prevention. Make an informed choice. Find out more at nhs.uk/HPV or contact your school immunization team.
13: Welcome to the jungle.
14: Film, bilkul fake.
13: Hamare film army wali.
15: Aur
13: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
14: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
15: और स्टार कास्ट है
14: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्षद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
16: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
14: वेलकम टू दी जंगल इन सिनेमास 26 जून।
17: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना
18: मैं किस लिए फिल्म में?
19: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
20: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
19: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
20: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
19: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
21: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
22: Great news, Tariq Halal Raiders Lane is now open. Come and grab our incredible opening offers. Fresh chicken legs for just £2.99 per kilo or 5 kilos for only £10. But hurry, this amazing deal is available while stocks last. Plus, you'll find plenty of more fantastic offers in store. Visit us today at Tariq Halal Raiders Lane, 287 Raiders Lane, Pinner, HA5-5EJ. Quality, value and freshness only at Tariq Halal Raiders Lane.
23: Up next, Golden Rock with Unrock on Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में सुन रहे हैं आप मिस्टर इंडिया फिल्म का ये खूबसूरत गीत। शेखर कपूर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर साहब और फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे उन्हीं के भाई साहब यानी कि अनिल कपूर साहब। श्रीदेवी जी इस फिल्म में मुख्य किरदार में, लेकिन अमरीश पुरी साहब को नहीं भूला जा सकता। कहा जाता है कि उस जमाने में सबसे महंगे विलन वो थे। शेखर कपूर ने उनकी कॉस्ट्यूम जो मोगैम्बो की जो कॉस्ट्यूम थी उसको बनाने के लिए उस दौर में उस जमाने में 25,000 रुपये खर्च किए थे। लेकिन जो मैं पहले बोलने वाला था वो तो मैं बोलना भूल ही रहा हूँ, वो ये है कि बिजली तो आप लोगों ने गिराई, इतने प्यारे प्यारे संदेश भेजकर हमारे व्हाट्सएप के विंडो को एकदम पूरी तरह से भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का जो इससे पहले हॉट सीट पर थी। और इस फिल्म में एक आपने अंतरा सुना होगा, जानू जो तुमने मुझसे बात छिपाई। कविता कृष्णमूर्ति जी ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब उस दौर के संगीत के महारथी। लेकिन आप गौर करेंगे तो जानू की जगह एक जगह कविता जी ने जीनू भी बोला है और इस टेक को बाकायदा रखा गया क्योंकि बहुत ही प्यारा वो टेक था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने जब को बात पता चली कि जानू की जगह जीनू निकल गया है कविता जी के मुँह से, लेकिन फिर भी इस टेक को फाइनल टेक रखा गया। आप कभी भी सुने गौर फरमाएं तो आपको जीनू सुनाई देगा। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं वीकेंड वाली पाठशाला, मैं हूं आपके साथ अनुराग। अगला गाना बड़ा ही प्यारा, सुनते रहें और याद रखें कि दिमाग की बत्ती जलाने के लिए आपको आज का गोल्डन वर्ड थोड़ी देर में मिलने वाला है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 124.05 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: I'm literally crying.
3: Same, but my bladder can't take these laughs. I may have to leave.
4: Wait, try one of my always discreet maximum protection pants. Total game changer when the floodgates open up.
3: Seriously?
4: It gives me complete peace of mind, even for my heaviest bladder leak surprises. Go try one on.
3: Fair play. And now I can stay until the last gag.
4: Try Always Discreet's new maximum protection pants for heavy bladder leaks.
5: Uncle!
6: Yeah.
7: Leica Gold.
8: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
9: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai real estate stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
10: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala style.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: London, you asked and it's happening. Aditya Garvi Garba Tour UK 2026.
6: Lattuke halone nandala.
5: At Watford Colosseum on Saturday 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Garvi live in London. Book now on AXS. Aditya Garvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
9: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
9: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
9: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
14: Eviction, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. दैट्स 0208-907-2444.
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
17: 10 days to Turkey guaranteed. Departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
18: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
19: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai Mukesh sahab aur Lata ji ki awaaz mein is gaane ko kabhi bhi suno bhai, bada maza aata hai. Dharti kahe pukar ke, kasam se ye gaana kehta hai pukar ke ki mujhe bas sun lo, pura din ban jayega tumhara. Agla gaana bhi unke liye. क्योंकि शोरदा के बहुत बड़े फैन हैं. ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना है. अब इसके बोल बताना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा. गाना सुनते हैं.
0: ऑन राग विद गोल्डन राग.

0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तो भाई आपके चाहते सिंगर हरिहरन आ रहे हैं यूके स्पेशल वन ऑफ इवेंट में जो हो रहा है सैटरडे 4th of July रॉयल फेस्टिवल। कहाँ पर है ये वेन्यू? रॉयल फेस्टिवल हॉल है, जी हाँ। और इसके लिए आप southbankcentral.co.uk पर टिकट्स के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
3: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: चुरा लिया है तुमने झूमर। यादों की बारात फिल्म का ये गाना आशा दाई और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों में ये गाना टॉप 10 गानों में ज़रूर शुमार होता होगा। अगला गाना भी हम रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाएंगे उनके लिए जो बेफिक्र होते हैं। भाई अगर कोई आपका साथ ना दे तो खुद का ही दामन थाम लेना चाहिए और कुछ ऐसे ही तस्दीक कराता है अगला आने वाला गाना। और उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले घंटे आप बता हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ल्ड।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: लेमफाई के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 124.92 पाकिस्तानी रुपीस, 368.21 श्रीलंकन रुपीस, 441.53 बांग्लादेशी टका, 162.63 एंड 1 यूएस डॉलर 1.32।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.05 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, आप भी हमारे साथ निभाते चले हैं। रफी साहब के आवाज में हम दोनों फिल्म का एक गाना सुनने के बाद अब आपको बताएंगे, क्योंकि अब आपको जलानी अपने दिमाग की बत्ती। और आज का गोल्डन वर्ड है, आप बता रहे हम सुनाए वाली थीम के लिए, तुझको। याद रखिए, तुमको नहीं चलेगा, तुझको चलेगा। तुझको, मुझको, तुझको वाला तुझको होता है ना, वही तुझको। और हम तक पहुँचाइए अपनी फरमाइश की पिटारी से तुझको वाले सॉन्ग्स। अगला गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज में।
1: लाइका गोल्ड। Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
5: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
7: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
11: गारंटेड।
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 02085748410।
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: This Father's Day Sunday, Leica Radio Network teams up with Ambala Sweets.
15: I love you, Daddy.
14: For you to win a box of mixed mitai. Every hour, every station, on the Leica Radio Network.
15: Oh, love.
14: On Rug with Golden Rug.

चाहे तुझको चाहेंगे हम, उदित जी और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजों में मन फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम तक पहुंचाया है आज की थीम को ध्यान में रखते हुए जो कि है तुझको। जी हाँ, और ये गाना हम तक पहुंचाया है बहुत सारे लोगों ने। उल्लास जी हंस

0: मिस्त्री जी, निर्मला जी और हंसा वोरा जी। इसके अलावा इससे पहला गाना जो हमने आपको फिल्म DDLJ से सुनाया था, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो कि 1995 में ही ले गए थे, लता जी और उदित नारायण जी की ही आवाज़ों में ये गाना हम तक पहुंचाया था अमित पटेल जी और किरण जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, दिमाग की बत्ती जल गई, हम तक बहुत सारे गीत पहुँच भी गए हैं, बस सिलेक्शन करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनाएंगे आपको रफ़ी साहब की आवाज़ में। बहुत सारे गाने आए हैं वैसे रफी साहब की तुझको वाली थीम को पकड़कर। आगे बढ़ते हैं, सुनते रहें गोल्डन राग संग सुरों से सजी वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI के योनो मोबाइल ऐप के जरिए भी और ब्रांच और बैंक में भी जाकर आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं 124 रुपीज़ एंड 5 पैसे। याद रखें अपने पैसे को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो मोबाइल बैंक से भी ट्रांसफर करें।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो अगला मुकाबला 6 बजे नीदरलैंड और स्वीडन के दरमियान, उसके अलावा 9 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच। याद रखें आप 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं हमारे स्पॉन्सर रैक लॉ अगर आप मेंशन करते हैं लाइका नेटवर्क।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 99 1234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
4: ये है Leica Gold.
5: चलो जाइए एक नवा सफर पर सिरीन हॉलीडेज साथे।
6: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दार एस सलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
7: बस पैक करो आणि रिलैक्स थई जाओ,
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे login karo sirinholidays.co.uk par.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Dreaming of owning a property in Dubai? Now you don't need to fly thousands of miles to explore the opportunity. Dubai's leading real estate experts are coming to Quality Foods Hayes from the 27th to the 30th of June. Discover luxury investment options, exclusive registration waivers, residency support, and an incredible 0.25% monthly payment plan. Visit the Dubai Real Estate Stand at Quality Foods Hayes. Your future in the sun could start right here. 27th to the 30th of June. See you at Quality Foods Hayes.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
13: No more worries for me or you.
14: Southall Travel, at all protected.
15: Are we there yet?
16: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
15: Relax, I've booked the Uber already.
16: How? My roaming isn't even working yet.
15: I switched to Simsy before we left London.
16: Simsy? Since when are you the tech expert?
15: Since I decided I want a stress-free holiday.
17: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
18: T's and C's. Apply.
19: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें. हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
20: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
21: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
22: दिस फादर्स डे संडे लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद अंबाला स्वीट्स. For you to win a box of mixed mitai, every hour, every station, on the Laika Radio Network.
23: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, नीलकमल फिल्म का ये खूबसूरत गाना हम तक पहुंचाया था हसुमती जी ने. इसके अलावा सुमिला मुंगुर, फवाद जी और कीर्ति जी ने बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए. और अमिता जी, आपने मन का गाना भिजवाया था हम तक, आपका नाम लेना रह गया था, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला मुहावरा सोच के माफ़ कर दीजिएगा. अगला गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम कभी कभी.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क ने कंफर्म कर दी है अपनी पार्टनरशिप प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड राग हसन के साथ. इसकी सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी laikaradio.com पर.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: भाई कभी कभी तो मेरे दिल में भी ये ख्याल आता है कि कहाँ से इतने प्यारे गाने आते हैं और जो हमारे लिए एकदम धरोहर से कम नहीं है। कभी कभी फिल्म का एक गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में हम तक पहुँचाया विजय जी ने, पंकज जी ने, शालिनी और रोहित साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। आप भी अपने समर को यादगार बनाए साउथ ऑल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक, सिटी स्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड अटोल प्रोडक्शन। 40 साल से ज्यादा का भरोसा और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड का विजेता। विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रेवल पर। कॉल कीजिए, नंबर है 0208574 8410।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
3: ye hai Leica Gold.
2: Leica Extra podcast update.
1: Leica Extra new episode aapke liye lekar aaya podcast ka. South Asian title is South Asian Women in Sports, hosted by Deep Raja. किस तरह से बैलेंस करेंगी ट्रेडिशन और एम्बिशन को साउथ एशियन वुमेन इन स्पोर्ट्स।
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: So, what's on your to-do list today? Why don't you check if you're eligible for pension credit? It tops up your pension income and also opens up help with heating bills, council tax and more. Search pension credit on gov.uk or call 0800 991234. There's nothing to lose. Check today. Pension credit. Credit where credit's due. Eligibility criteria apply.
5: ये है Leica Gold. 10:35 AM.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.

0: उदय नारायण और साधना सरगम जी की आवाजों में पृथ्वी फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपके लिए हम तक पहुंचाया था शालिनी गरिमा और कंचन जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए £1 के बदले इंडियन करेंसी में 125.17 पाकिस्तानी रुपीस 368.25 श्रीलंकन रुपीस 441.52 बांग्लादेशी टका 162.58 अफगान अफगानी 85.17 एंड US$1.32
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.05 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. London's biggest classics all day. This is Leica Gold. Me.

नाजिया हसन जी की आवाज में स्टार फिल्म का ये सुपरस्टार गीत 1982 में फिल्म आई थी, लेकिन बिना वक्त गवाए आपको बताना है जल्दी से आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शन जल्दी से बताता हूँ। इस खेल के कायदे प्लस कानून, हम आपको तीन गानों के ऑप्शन देंगे ए बी एन सी, जिनमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना हम बनाएंगे विजयी आप सभी के मतों के द्वारा। तो पेश खिदमत है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है बड़ा ही प्यारा गाना रफी साहब की आवाज में, मैंने पूछा चांद से, फिल्म का नाम है अब्दुल्ला। ऑप्शन बी है जन्म जन्म मेरे सनम, फासले फिल्म का ये भी गीत किशोरदा की आवाज में कमाल का। और ऑप्शन सी है मुझे इश्क है तुम्ही से, फिल्म का नाम है उम्मीद। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है मैंने पूछा चांद से फ्रॉम द फिल्म अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है जन्म जन्म मेरे सनम फ्रॉम द फिल्म फासले,

0: एंड ऑप्शन सी मुझे इश्क है तुम्ही से। फिल्म का नाम है उम्मीद और इस उम्मीद में हम बैठे हैं कि आप जल्दी जल्दी से अपने अपने वोट कास्ट करेंगे और अपने मतों द्वारा अपने गीत को बनाएंगे आज का विजेता। अगला गाना हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हरी हरन साहब के सुरों से सजा लता जी के साथ देती हुई, फिल्म का नाम डर। थोड़ी देर में ये गाना आपके साथ होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 124 रुपीज़ 5 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ट्रांसफर करते रहते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो भाई दो अहम मुकाबले आज 6 बजे नेदरलैंड और स्वीडन के दरमियान और जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच 9 बजे मुकाबला होगा। याद रखें आप 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस भी आप रेड क्लॉक के जरिए पा सकते हैं। मेंशन कीजिए सिर्फ लाइका नेटवर्क।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: Leica Gold.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
8: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira twin centre escape. Fly from the UK, enjoy 3-night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
12: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर Travel Mantra.
13: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
14: Lights on, shutters up, staff ready.
13: But today's customers don't start on the high street.
14: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
13: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
14: They walk into your competitors.
13: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
14: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
15: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
16: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपनी टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लंदन 23rd और 26th जून. बी देयर.
15: सो इंडिया लुकिंग टू प्रेस होम दैट एडवांटेज. देयर्स अ चांस.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
18: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
19: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
18: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
19: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
18: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
20: टीचर्स, ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी रोबोथिंक यूके एक्सपैंड कर रहा है. बिकम अ कंफर्म्ड फ्रेंचाइज पार्टनर एंड रिसीव अ रोबोटिक्स किट पैकेज वर्थ ओवर £7,500. पेरेंट्स कैन आल्सो सेव 10% ऑफ ऑन फुल वीक समर कैंप्स विद कोड LAIKA10. विजिट book.robothink.co.uk/LAIKA.
21: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीना ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
22: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
23: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: लता जी और हरी हरन जी की आवाज में डर फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा सा नगमा। और एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आपको वोटिंग करते रहना है और वो जो ऑप्शंस हैं वो भी चुनना है। तो एक बार फिर से हम गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस आपके सामने रख रहे हैं, वो हैं ऑप्शन ए है मैंने पूछा चांद से फ्रॉम द फिल्म अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है जन्म जन्म मेरे सनम, फिल्म का नाम है फासले, और ऑप्शन सी है मुझे इश्क है तुम्ही से, फिल्म का नाम है उम्मीद। उम्मीदें का दामन थामे रखिए और अपने अपने वोट कास्ट करते रहिए।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: निगाहें मस्ताना, किशोर दा आशा दाई की आवाज में पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना हमने विंटेज गोल्ड वाला गाना आपको सुनाया, जो आप अक्सर सैंडी जी की म्यूजिक कंपनी में एंजॉय करते हैं। तो आपको बता दें कि भाई वोटिंग लाइन हो चुकी है बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या दिया है सरप्राइज आप सबने एक दूसरे को। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो गाना रफी साहब की आवाज में, देखते हैं क्या है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 125 रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस 368.11, श्रीलंकन रुपीस 441.46, बांग्लादेशी टका 162.53, अफगानी 85.23 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.05 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like our gold.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: रफी साहब की आवाज में क्या सुपर सुपर हिट ये नगमा है। अब्दुल्ला फिल्म का भी आप ये गीत सुन रहे थे। इस फिल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने और इस गाने को सबसे ज्यादा वोट देकर आपने बनाया है आज का विजेता। जल्दी से नाम लेते हैं किसने किसने इस गाने को दिए थे वोट। मार्क लोन, हंसा वोरा जी, गिरीश पंजवानी, रानी सुनाहे, मिसेज इकबाल बेगम, भारती जी, अयूब चौहान जी, निर्मला जी, शाकू जोशी, सलमा जी फ्रॉम कैंट से, दिनेश जी, हना जी और अर्जुन साहब। इसके अलावा एक लिस्ट का नाम और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सुन लीजिए किसका किसका नाम है उसमें। संतोष जी, प्रीति जी, अमिता, सीटू, उल्लास, हंसा मिस्त्री, के भामरा, शेखर जी, मीना शाह, सुमित चौरसिया, कंचन, पंकज वर्मा, सालिम अख्तर। आपने भी जिस गाने को वोट दिया है वो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है भाई। दोनों गानों को लेकर वोट्स हो गए हैं टाई। हो रही है आपसे मुलाकात कल। नेक्स्ट आ रही हैं शीना जी, जिन्हें हम प्यार से गुंजन भी कहते हैं, सरिता जी की जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India
1: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: London, mark the date, 25th of June.
4: Something truly exciting is on the way.
5: The authentic taste of India is finally coming to Leicester Square in central London.
3: Yes, Haldiram is opening 25th of June in London.
5: From Raj Kachori to Chole Bhature to Pao Bhajis.
4: Parathas, sweets and so much more. All the flavours you've missed from India are coming right here to London.
3: Haldiram's opening 25th of June
5: at Leicester Square, central London.
6: Haldiram's.
7: Celebrate Father's Day on Sunday, 21st of June in Ambala style. Ambala Sweets has been bringing families together through taste and tradition since 1965. Freshly made, beautifully presented and perfect for their dad who deserves the very best. Classic laddus, habsi halwa or an assorted mithai selection. Make his day extra special with a gift from Ambala. Order online today at ambala.co.uk and celebrate Father's Day in Ambala. बाला स्टाइल
8: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
14: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
13: डेजर्ट सफारी
14: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
13: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
14: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 574 8410 that's 8574 8410
15: साउथ हॉल ट्रेवल
10: battle protected.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
6: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
15: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
16: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
17: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे. जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: is Laika.
1: You are logged into Laika Gold with me, Sheena. और बहुत ही खूबसूरत से इन दो गानों के साथ we have just started in the second hour of the show. And as I always say, the show that's about entertainment and more entertainment. और खूब सारा entertainment और प्यार, मोहब्बत, इश्क. बस यही तीन लफ्ज रखिए, बाकी सबको यूँ as we all say in Punjabi, मिट्टी पाओ. And I just have to share with you कि मैं कल कहाँ थी. यस, कल आई वॉज रियली एन्जॉइंग बिकॉज इज एन अपकमिंग मूवी कमिंग, कैरी ऑन जट्टा 4.

0: What a beautiful track from the movie Kurbani, sponsored by Dairy Valley.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
0: एंड यस, अब टाइम आ गया है कि आप लोगों को बेसिकली थोड़ा एंजॉयमेंट करना चाहिए. यस, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह. सो डेफिनेटली अगर आप ये चांस जो है विन करना चाहते हैं और अपनी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ भी जाना चाहें, एंड इट्स टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे द 26th of June एट 27 पाथीदार समाज वेम्बली लंदन. आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है. सेंड द वर्ड हस्बैंड टू द सूट स्टूडियो व्हाट्सएप राइट नाउ. यस, यू जस्ट नीड टू सेंड द नंबर राइट नाउ 0742423 23. और ये जो है बेसिकली 26 जून को होने वाला है. दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर लंडन वेन्यू ओनली. विनर्स विल बी एबल टू कलेक्ट टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू रिसेप्शन ऑन द इवनिंग ऑफ द शो. टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई. सो सिर्फ आपको आपके हस्बैंड का कोई नाम नहीं लिखना है, कोई फोन नंबर नहीं देना. यू जस्ट नीड टू राइट द वर्ड हस्बैंड एंड हु नोज वेदर यू आर गोइंग विद योर हस्बैंड और समवन एल्स.
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Laika Gold.

0: एंड यस, मैंने तो आपको कहा था मिर्ची खा के आई है या सोच के आई है. एंड या आई जस्ट वांटेड टू चेक, समटाइम इट इज गुड टू चेक लोगों का फोकस कैसा है, कितने अटेंटिव हैं. इट्स लाइक क्लास गोइंग ऑन, छींडा की क्लास. एंड आई कैन सी दैट काफी लोगों ने मुझे ही मिर्ची भेज दी है और काफी लोगों ने बोला हाँ हमें मिर्ची पसंद है. सो डेफिनेटली आप सुन रहे हैं, कभी कभी ये भी जानना जरूरी है. यस yes, कभी कभी थोड़ा बहुत फन कर लेना चाहिए. बट आई सी लॉट ऑफ पीपल यू नो आर रिक्वेस्टिंग कि कुछ और, मतलब इतने प्यारे गाने आप बजा रहे हैं तो कुछ डिफरेंट भी चाहिए. तो डिफरेंट आएगा आएगा, वेट करिए. लाइफ में इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं. एंड इस सेक्शन की खास बात यह है, वी गोना रिवाइव द ओल्ड मेमोरीज, कि जैसे कि कोई एक मूवी थी जो इसी दिन आई थी एंड बिकेम अ सुपर डुपर हिट. चाहे सुपर डुपर हिट हुई यू नो, लेकिन आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान लगाई थी. पर जो मूवी आज आई थी उनकी तो आर्टिस्ट की भी क्या बात करें, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की क्या बात करें. यू नो इट वॉज ऑल अ सुपर डुपर हिट. और आज ही के दिन 20th of June को बहुत ही खूबसूरत सी मूवी रिलीज हुई थी जो थी जाबाज. क्या इस मूवी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. बट या ऑफकोर्स वी गोना टॉक अबाउट इट, बिकॉज इसके मैं दो गाने आपको दूंगी एंड मेजॉरिटी विल विन. या तो हम बेसिकली प्ले कर सकते हैं तेरा साथ है कितना प्यारा, और एल्स आई कैन ऑल्सो थिंक अबाउट प्लेइंग प्यार दो प्यार लो. आई लेट यू डिसाइड. आज आप लोगों की चलेगी, जिसकी वोटिंग सबसे ज़्यादा होगी हम वही गाना प्ले करेंगे. सो फटाफट भेजिए मैसेज मुझे. एंड जाबाज बेसिकली दरिया दिल कह दूँ, 1986 में आई थी ये मूवी. एंड वी ऑल नो अबाउट अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया, ऊ ला ला, एंड प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय वन एंड ओनली फिरोज खान. और इसमें श्रीदेवी का भी बहुत खूबसूरत सा गाना था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. ये तो वैसे सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है. मिल जाए तो उसको संभाल के रखिए, बस इतनी ही एडवाइस है. दिस इज शीना ऑन लाइक अ गर्ल.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 124.01 Indian rupees. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June. And be in a win to win £75 voucher har roz, every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: And yes, talking about the FIFA World Cup 2026 today, it's about Netherlands versus Sweden. And yes, the score is 1-0. Quite interesting one, isn't it? Goal ho bhi gaya, yes. Goal Brian Robbery gives the Netherlands a 1-0 lead. So we'll keep you posted about the scores.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica
5: Gold. Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket.

0: चपा चपा चरखा चले फ्रॉम द मूवी मार्चेस एंड द आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज नन अदर देन हरिहरन एंड दिस सॉन्ग इज एन अमलगमेशन जिसमें हरिहरन और सुरेश वाडेकर का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है एंड सो इज द गाना बेसिकली इस गाने में एक रूह है जो आप ढूंढते हैं कि चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी तो बेसिकली इट इज़ ऑल टॉकिंग अबाउट कि जब आप घर से बाहर होते हैं एंड हाउ यू मिस योर फैमिली यू मिस योर पार्टनर यू मिस योर मॉम एंड यही गाने को ऐसे दर्शाएगा और हरिहरन के कितने सारे गाने हैं मतलब जितने भी प्ले करे जाएँ यू नो दिस इज नेवर नेवर एंडिंग लिस्ट सो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टू बिकॉज इट्स अ वेरी मीनिंगफुल एंड डीप गाना एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज द गाना स्पॉन्सर्ड बाई डेरी ली बट दिस इज द गाना यू गाइस पिक्ड हाँ जी मैंने कुछ नहीं किया आपने जाबाज का ये गाना पिक किया सो लेट्स प्ले इट लेट्स सी किसने मेजॉरिटी के साथ क्या गाना आप लोगों ने चूज किया है
1: फील गुड ट्रैक Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फ्रॉम द मूवी पड़ोसन मेरे सामने वाली खिड़की में, बट आजकल तो यू नो इट्स नॉट पॉसिबल स्पेशली इन यूके, राइट? आपकी सारी जो विंडोज़ हैं वो डबल ग्लेज्ड होती हैं, ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं, तो ये मौका मिल ही नहीं सकता, राइट? एम आई राइट?
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल.
0: So yes, Anji, make this summer memorable with the Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals that includes flights, hotels and all protection. Aur kya chahiye? Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or simply call them on 0208-574-8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. Even people who know nothing about investing. Like Keith, who thought dividends were a boy band. Jessica, who thought compound interest was a prison dating app. And Sue thought FTSE 100 was a bit of under-the-table fun, which surprised her accountant.
3: Oh, no.
2: If we can make investing feel good for them, it's no wonder which have recommended us 8 years running. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: Travel ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana.
8: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
13: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
14: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
15: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है?
17: यार, मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TW Pays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड. विजिट twpays.com/leica या कॉल कीजिए 0203129-9840. TW Pays, हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बचत.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
18: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना। मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 02037736333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: That was a lovely song. Dalit Mahmood ki awaaz Diwali ki raat film thi. Ab hum sunenge one of Lata Mangeshkar's very, very iconic. I mean, she had so many iconic songs. Doesn't really matter if I say iconic anymore, but it really is. I've always loved it. V Shantaram ki film thi Do Aankhe Bara Haath. And this was from 1957. और मौसीकार थे वसंत देसाई और भारत व्यास. As I said, V Shantaram की फिल्म थी एंड अ ट्रूली वंडरफुल सॉन्ग बाय लता मंगेशकर. फिर उसके बाद अ फिल्म आई ऑलवेज थॉट स्टार्ड किशोर कुमार, बट आई वाज सो रॉन्ग. इट्स एक्चुअली देवानंदन एंड आई डिडंट इवन रियलाइज. फिल्म का नाम है फंतूश. एस टी बर्मन का संगीत, स्टार देवानंद, कुमकुम, केन सिंह एंड शीला रमानी. अ वंडरफुल वंडरफुल सॉन्ग बाय द वन एंड ओनली किशोर Kumar. This is Vintage Gold with Sandy Shah. Thank you for your messages.
1: Vintage Gold on Like a Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: है लाइका गोल्ड।
1: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इतली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे।
2: अंकल तमे पहला थी आवाज छो।
3: आवा एटले केवा?
1: धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स जिंदगी वंस मोर।
3: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू बुद्धि वेची आवे छे तू? अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी न पूछे।
1: आवर फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
3: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर।
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
5: द वॉइस दैट touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334 24 आवर लाइन।
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 0203773633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
14: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.